0: And we placed therein gardens of palm trees and grapevines and caused to burst forth therefrom.
1: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है. दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो. विजिट कीजिए tarikhalal.com.

0: तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई बिल्कुल रास रास अब तो तू आ जा पास पास है गुजारे।
1: क्या बात है आश। हाय
0: गुड मॉर्निंग टोनी,
1: राधा।
0: सॉन्ग ऑफ द डे इज
1: या
0: तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास।
1: Someone needs to tell him, man, just open up the tap, get some water, and your pass is sorted.
0: तू

0: और दूर तक जाएगा ये सिलसिला, यानी अब से लेके दोपहर के पूरे एक बजे तक। जानम समझा करो, ये फिल्म का नाम।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: और अब बारिश की बात हो जाए थोड़ी सी, स्टेवन बीन की आवाज और पायल उसका साथ निभाएंगी। मैं वापस आऊंगा प्रोग्राम के पहले सी की ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का वार्म अप टाइम वेडनेसडे मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। चाय पी लो चाय।

0: ये था आज के हमारे प्रोग्राम का वार्म अप टाइम, जिसमें एक लफ्ज मुश्तरक रहा, एक लफ्ज मुश्तरक, जानम। एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज। बरतानिया का मेयारी वक्त सुबह के 10:25, पाकिस्तान में दोपहर के 2:25, भारत में 2:55।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: US dollar 1.3832. Indian rupees mein 127.21, Pakistani rupees mein 367.15, Bangladeshi taka 163.75, Sri Lankan rupees 438.26 aur Afghani rupees 85.75.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The new Asian sound for the Northwest. This is LIKA Radio, Greater Manchester. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और Southall वालों का पैगाम आज भी वही जो कल की तरह, दुबई के लिए बेहतरीन ऑफर्स, ओनली 629, जी हाँ 629 पर पर्सन थ्री फ्लाइट के साथ ट्रेवल बाय 10 दिसंबर तक आप इसको जो है अपनी हॉलीडे बुक करा लीजिए। एमिरेट्स एयरलाइन के साथ ये कंबाइन कर रहे हैं और टर्म्स कंडीशंस लागू होंगी। नंबर है Southall Travel 02088434444, southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is LIKA Radio. News update.
0: और अब उर्दू की खास खास हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को हर कीमत पर रोकना होगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा। अमरीका ईरानी सदर और वजीर खारजा से मुजाकरात कर रहा है, जेडी वेनेस ने कहा। मुत्तहिदा अरब अमारात में नमक, चीनी और चिकनाई की मकदार की नई हदें मुकर्रर, खिलाफ वर्जी पर 5,00,000 दरहम जुर्माना होगा। ईरान और अमरीका के दरमियान कतर की सालिसी में मुजाकरात जारी है, कतरी वजीर खारजा ने कहा। तलबा एहतजाज के मामले पर फ्रांसीसी वजीर खारजा का ट्रंप को जवाब। ट्रंप ने ईरान को अमरीकी शहर तबाह करने का मशवरा नहीं दिया, व्हाइट हाउस की वजाहत। गजा का बदला लेना चाहता था, फ्लाई दुबई के शरीक पायलट का एतराब। रूस के साथ कशीदगी के दौरान फ्रांस का जदीद जोहरी मिसाइल का तजुर्बा। सऊदी काबीना का यमन की आईनी हुकूमत के लिए मुकम्मल तआवुन का इरादा। आबनाए हर्मस से तेल की तरसील, ईरान जंग से कबल की सतह पर बहाल हो गई। भारत में जाली अफसर बनकर सियासी रहनुमा से शादी करने वाली खातून जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार। फ्रांस में वजीर आजम ने हाई स्कूल की क्लासों में हफ्ते भर के लिए पढ़ाई मुअत्तल कर दी है। और मलेशिया की एनर्जी कंपनी पेट्रोनास के सरबरा की LNG बहरान की वार्निंग। तो ये तो थी उर्दू की चंद खास खास हेडलाइंस। मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिए LIKA Radio Greater Manchester.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: और आज का सोने का भाव, हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई £100.58, यानी £100.58 पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट आज हो गया 37,400 रूपए 37,400 रूपीज।
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. LIKA Radio. Ye hai LIKA Radio. LIKA Radio. World, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: Passports, tickets, kids' tablets.
3: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
2: And checking in with grandma.
3: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
2: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
2: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Holiday sorted.
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: The Buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties The Buy has something for everyone.
5: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11, 11.
5: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
8: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
9: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. A Leica Radio Classic. Plays now.

0: by UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: राइट जनाब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैगाम योनो एसबीआई मोबाइल वाले कहते हैं आपको कि इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या फिर इनकी किसी ब्रांच में जाएं। आज का रेट दे रहे हैं ताजा तरीन 126 रुपए 15 पैसे।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। वी आर लाइक अ रेडियो,
2: लाइक अ रेडियो,
0: ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: Like a radio greater Manchester, like a radio Bradford, like a radio Huddersfield, Halifax and Leeds. Khush aamadeed zindagi ke ek aur subah, hafte ka ek aur show leke, budh ka show, hafte ka teesra mid-morning show. Aur October mahine ka 7th din, yani aaj 7 tarikh ho gayi. Hamari diary ke panne pe ek Pakistani khubru superstar ki birthday ka din likha hua hai. Aaj hi ke din wo Karachi mein paida hui thi. अपने वक्त की मुमताज तरीन अदाकारा, नाम की तरह मुमताज, सभी की दिलदादा, सभी की हर दिल अजीज। शुरुआत करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से अपनी बज्म की, बज्मे ताबिश जो कि ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो हुआ करता है। मेरा आपका साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे रोजाना सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक, ताबिश के लंच टाइम तक, और आप लोगों में से किसी के नाश्ते का टाइम भी हो सकता है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इसी तरह मेरी तरह मुस्कुराते रहिए सारे दिन, और खुशियों के साथ और अच्छी सी बात के साथ इब्तिदा करते हैं प्रोग्राम की रूपरेखा में वही होगा जो कल भी हुआ था। आज भी रिडल का नागा है, आज पहली नहीं बूझी जाएगी, बस आपका हाल चाल पूछा जाएगा। कुछ अच्छी अच्छी बातें प्रोग्राम में आप शामिल करेंगे। थोड़ा सा फॉर्मेट को हम धीरे धीरे अब चेंज कर रहे हैं, क्योंकि गाना बजाना, मुसीकी, गीत माला, ये सब तो चलता ही रहता है, मगर कुछ अच्छी कुछ काम की ऐसी बातें जो जिंदगी में बड़े काम आने वाली होती हैं, तो लिहाजा ऐसी काम की बातों का प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 07703403020 के नंबर पर आप मुझे खत लिखें, आपके नाम आपके मैसेजेस को इस पाकिस्तानी गाने के बाद में शामिल करता हूँ।
0: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

द्रौपदी मलिक तरन नूरजहां और अदाकारा मुमताज का जबरदस्त डांस सुबह ही सुबह अच्छा सा आ गई भाई चीमा भाई और बाबर भाई जमशेद चौधरी भाई मजर भाई लीड्स में मजर भाई इतना डांस ना करें जरा गाड़ी ध्यान से चलाएं मलिका अभी डांस कर रही है ड्राइव के दौरान वैसे बड़ा मजा आता है जब गाड़ी भी खूब चल रही हो तेज और फुल वॉल्यूम में आपकी पसंद का सॉन्ग भी चल रहा हो तो समझ नहीं आता कि फिर राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है तो ध्यान रखिएगा जरा अभी पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया लंदन से लेके मैनचेस्टर तक और मैनचेस्टर से लेके लिवरपूल तक रुखसाना इलाही और इरफान इलाही नेल्सन में मजर भाई खालिद महमूद भाई माफी चाहता हूँ वहीद इकबाल भाई और नौशाद अली भाई बदले में स्टॉकपोर्ट में जाहिद अब्बास सिर्फ अब्बास शकील ममदानी वल्ली सुलेमान भाई साजिदा सुमरो और खुशबू बरी में चंदा बरी में लेला बरी में अमन एंथनी भाई वॉरिंगटन में हमारे साथ हैं एंथनी भाई कहाँ जा रहे हैं और सेल्फर्ट में हाँ जी कजूरी जी के साथ साथ यहाँ बोल्डम में है जी शिराज भाई हमारे साथ खालिद लंगड़ियाल भाई शहजाद वालेकुम अस्सलाम नसीर भट्टी लेस्बन में उमर बिस्मा महा एसपी सज्जाद पहलवान जरीन सीमा और नईम मलिक और वकार अंकल 90s throwback plays now like a radio

0: से निराला। Master Pani Puri or Pani Puri ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Ibanet Tabish on Leica Radio, Greater Manchester.
3: Great, Janab. Welcome back. Or, प्रोग्राम के फीडबैक की बात भी कर रहा था कुछ दिनों से, जब मैं आपके साथ यहाँ चिटचैट करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो बहुत से साथियों की तमन्ना रही है कि ताबिश भाई, किशोर कुमार फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे रफी साहब और मुकेश जी को आप हमेशा थर्ड और फोर्थ पे लेकर आते हैं, इसका क्या कारण है? पता नहीं भाई, मैं तो बस हर मोड़ पर यही सोचता रहा कि

0: उसको दूंगा सदा। फिल्म का नाम था चेतना, 1970 में ले गया था अभी सुबह ही सुबह आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का। अब लास्ट ट्रैक जाएगा आमिर के लिए। आमिर का काम है दिन भर ड्राइव करना। आमिर ने कहा कि ये गीत कर दें नाम, एजाज भाई आपके नाम हुआ ये गीत जो चल रहा है मुकेश का, और आने वाला गीत होगा आमिर के नाम।
1: Leica Radio Network, now the home of Leica Radio Greater Manchester।
0: आमिर ने कहा कि ताबिश भाई मेरा काम दिन भर ड्राइव करना है, और मेरे साथी और भी होंगे जिनका काम दिन भर ड्राइव करना होता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट पैदा कीजिए, जरा सा हल जल होनी चाहिए। तो मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, लीजिए प्रोग्राम के पहला हिस्से का समाप्त होने का ऐलान हुआ। मैं वापस आता हूँ 11 बजे के बाद।

0: जी हाँ, ये है आशा जी, आशा भोसले और कुमार सानू का बड़ा ही खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम भी इत्तेफाक से बलमा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का दूसरा सॉन्ग अगर जिंदगी हो तो बस तेरे संग हो। 90s के जमाने के ये सॉन्ग न जाने क्यों जब भी सुनते हैं हम तो एक अजीब सी लहर जहन में आती है और एक वही वक्त आता है, जमाना VCR का जमाना। ये सॉन्ग आया था जनाब कराची से। फरीद भाई ने कहा कि इसे नाम कर दें मोहम्मद असद खान, असद खान के नाम है, मोहम्मद असद खान कौन है भाई, लेकिन ये गीत मैं नाम करूंगा गुलाम अली भाई आपके। बुध की सुबह और बर्तानिया का म्यारी वक्त सुबह के 11:15।
1: सर्दी का मौसम अपने साथ बहुत सारी मस्ती और खुशियाँ लेकर आता है और ये वक्त यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहेंगे, लेकिन ये मौसम अपने साथ फ्लू, RSV और कई दूसरे वायरसेस भी लेकर आता है जो आपको गंभीर तरीके से बीमार कर सकते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। शुक्र है कि इनसे बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। बच्चों से लेकर नौजवानों तक और बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिनको खुसूसी एहतियात की जरूरत है, जैसे कि हामला खवातीन, कौन और कैसे इन वैक्सीन को ले सकते हैं, इन मालूमात के लिए सर्च कीजिए NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस, दैट इज NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस।
2: Sunshine, skyscrapers and souks for less than you think. This is Affordable Dubai from South Old Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
2: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southoldtravel.co.uk now.
3: South Old Travel. Pay less, enjoy more.
2: South Old Travel. At all protected.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Hi guys, this is Arbaaz Khan.
7: This is Alka Yagnik.
8: Hey everyone, this is Arman Malik here.
9: Hi guys, this is Taha Shabadusha.
10: Hello, namaskar, adab. I'm Shah Rukh Khan.
11: Hi, this is Akshay Kumar and you are listening to Laika Radio.
12: Laika Radio.
13: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मैं समझता हूँ कि जिंदगी में कोई भी काम जो पहली मर्तबा होता है, पहली चाहत, पहला प्यार, पहली मुलाकात, पहला दावा, पहला सच
1: मोहब्बत की है। पहली बार मोहब्बत की है।
0: देखिए कहाँ ले गया ताबिश आज आपको। मलेका कहती है क्यों बिगाड़े हो लोगों को ताबिश। रॉयजल से अदनान कहते हैं मेरा गाना ताबिश भाई। शिराज भाई कहते हैं बस कर दो ताबिश, काम करने दो यार। क्या हालत हो गई आपकी है भाई। बुध की सुबह, गुड मॉर्निंग।
2: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, janab, US dollar 1.32, Indian rupees mein 127 rupees 21 paise. Pakistani rupees mein 367 rupees 15 paise. बांग्लादेशी टका 163.75, श्री लंकन रुपीज 438.26 और अफगानी रुपीज 86.75।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Ye hai LIKA Radio.
4: LIKA Radio.
2: The Pakistani hit of the hour is brought to you by the LIKA Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: और अब एक लम्हा भी जाए कि बिना आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान की उस इंडस्ट्री में, 70s और 80s के जमाने की वो इंडस्ट्री, लाहौर का वो मुल्तान रोड जहाँ पे बड़े बड़े स्टूडियो हुआ करते थे और बड़ी बड़ी शूटिंग्स हुआ करती थी। फिल्म का नाम है जनाब अंदाता, अदाकारा मुमताज। कराची में पैदा हुई।

0: मिल गया मिल गया भाई, साथी मिल गया। फिल्म का नाम था जासूस। मोटरसाइकिल पे सुल्तानों के सुल्तान, पंजाबी फिल्मों के हीरो सुल्तान राही, और उनके साथ बैठी हैं ना मुमताज। मैं नाहिद अख्तर कह रहा था। ये गीत नाम करेंगे हम अमन के।
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: जी हाँ, और सोने के भाव हमारे यहाँ यूके में आज हो गया 1 ग्राम गोल्ड का रेट 100 pounds 58 pence। जी हाँ, 100 pounds 98 pence पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट है 37,400 rupees 37,400 rupees।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Like a radio. This is Leica Radio.

0: Extra podcast updates.
1: राइट जनाब, लायका रेडियो की पॉडकास्ट अपडेट और एपिसोड नंबर 36 हो गया इस हफ्ते और इसे होस्ट कर रही हैं रूबी रजा। तो इसे प्लीज हमारे सोशल मीडिया पे जाके देखिए, खासतौर पर लायका एक्स्ट्रा पे जाके। और जिस मौजू पे ये बात हो रही है उस मौजू का टाइटल है इनसाइड इनटू फॉस्टर केयर।
0: लायका एक्स्ट्रा इज हियर,
2: ये है
0: लायका रेडियो।
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
3: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Laika Radio Network. For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J. Anniversary Sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London. Or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
5: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
7: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Advertise your business on Laika Radio Network, covering Greater London, the Midlands, Greater Manchester and West Yorkshire. Call 0207 132 1458 or email sales@laikamedia.co.uk. Ibanet Tabish on the Mid-Morning Show.
2: Laika Radio.
1: Or welcome back. Ab Sonodigam ki awaaz ka wo song jo... जिसे जब मैं सुनता हूं तो वो मेरे दिलों के तार छेड़ता है। ये सॉन्ग जरा ताबिश की पसंद भी सुन लीजिए। ताहिर सिद्दीक भाई ने कहा लंदन से कि हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है ताबिश भाई, हमारे यहाँ धूप निकली है साहब।

0: आग और पानी का संग भला कहा। हाथों की लकीरें और उनकी गिरह। कहते हैं कि इंसान परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती बल्कि उससे आज का सुकून भी चला जाता है। बुध की सुबह और 11 बजकर हो गए 40 मिनट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, जनाब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैगाम। यूनो SBI वाले यूके भर में इनकी बेशुमार ब्रांचेस हैं। इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या फिर इनकी किसी ब्रांच में जाएं। आज का रेट दे रहे हैं 126 रुपए तकरीबन कोई 15 पैसे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Pakistani hit of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: ang husong baki, dobara na imilta.
1: Like a radio.
0: Tuturuturut, tara, tara. Ye kya hai, bhai? Musikara M. Ashraf se puchna padega. Film ka naam tha, Mohabbat Zindagi Hai. Adakara Mumtaz ka naam aaj hamari diary ke panne pe likha hai sahab. Adakara Mumtaz, Pakistani superstar, 80s aur 70s ke zamane ki Mumtaz Adakara. Adakara Mumtaz 7 अक्टूबर 1952 को कराची में पैदा हुई थी और उनका असल नाम था, बल्कि है, नाम तो नाम होता है, उनका असल नाम है रिफत खजलबाश. उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे. कजूरी जी कहती हैं, वही वाह साबिर. बहुत से ऐसे सॉन्ग होते हैं आपके प्रोग्राम में पाकिस्तानी जो मैंने सुने नहीं होते, लेकिन जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया. जमशेद चौधरी भाई तो कह रहे हैं आज काम नहीं करने दोगे यार. गुलाम अली भाई की भी कुछ ऐसे ही विचार हैं. मैनचेस्टर में हमारे साथ हैं जी शाहिद भाई. शाहिद भाई कभी कभी आते हो यार, आ जाया करो, आ जाया करो. मैंने किसी को मना नहीं किया आने के लिए, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं. वहीद इकबाल भाई हैं हमारे साथ नेल्सन में. और राहिला जी हैं बरी में. राहिला जी क्या पक रहा है खाने में आज. बोल्टन में हमें मिसेज अहमद सुन रही हैं, बहुत इंजॉय कर रही हैं, आपको बहुत शुक्रिया. और अदनान है हमारे साथ रॉजडेल में. अदनान तुम्हारा गाना नहीं मिल रहा भाई. वहीं होती हैं गजाला जबी और आसिया बहन हमारी. और साबरा बहन हमें सुन रही हैं बोल्टन में. साबरा आपको बहुत शुक्रिया. और एजाज भाई हमें सुनते हैं रोजाना मैनचेस्टर में.
2: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
5: Sunshine, skyscrapers and souks
6: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
5: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
6: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
6: Southall Travel. At all protected.
7: Kabhi Kabhi.
8: Catch the evergreen classic Kabhi Kabhi on its 50th anniversary.
9: Mere khayal mein tumhe shaadi kar leni chahiye.
8: This Sunday from 2 PM at your nearest Showcase Cinema.
9: Humne tay kiya tha ki hum kabhi ek dusre ke raaste se nahi guzrenge.
8: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
10: Yes, we're in the final. I know. I still can't believe it. We're actually going.
11: Flights booked, tickets sorted. But hang on, how are we going to use our phones over there? We'll need them for tickets, maps, photos, and obviously sending the celebrations home.
10: Simzy, data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available. And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs.
11: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in 3 minutes.
10: Come on, let's go win this.
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: है एक छोटा सा घर हो
1: ना, कहीं मेरे प्यार का भरम।
0: इतना प्यारा प्यार का भरम, मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम था वारिस और ये सॉन्ग हमारे पास भेजा था नेल्सन से खालिद महमूद भाई आपने। मेरे प्रोग्राम के आज के सभी गीत वो लोग जो फरमाइशें कर रहे हैं ये उनकी पसंद के गीत हैं भाई। आप लोग समझ रहे हैं कि शायद ताबिश भाई लगा रहे हैं सॉन्ग। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसमें ताबिश भाई का कोई कमाल नहीं है।
1: खुशी तेरे गम से गम।
0: नदीम अजहर बाजवा साहब हैं कोई बोल्टन में, कहते हैं ताबिश भाई आपने कहा कि आपके दरवाजे सबके लिए खुले लेकिन आपकी खिड़की के पीछे जो दीवार है कहीं कमबख्त उसका दरवाजा ना खुल जाए। नदीम साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया तमाम साथियों दोस्तों का। और अब हमारे गाने की हमारे प्रोग्राम का अब ये लास्ट ट्रैक जा रहा है रोजेल अदनान के लिए। जी हाँ, एक और जिद्दी है हमारे पास, क्या करें साहब, हम तो पहले ही एक जिद्दी से परेशान है जो ओल्डन पे रहता है, अब एक रोजेल में भी आ गया साहब। और इस बदमाश की पसंद का गीत ना लगाओ तो धमकियां देता है ऊपर से, बताओ यार क्या करेगा ताबिश बेचारा। मैं वापस आ रहा हूँ 12 बजे के बाद, कोई कहीं नहीं जाएगा।

0: भाई बात अगर बाजार जाने की है तो जाना इंसान को अकेले ही चाहिए भाई, घर वाली को साथ लेके नहीं जाना चाहिए। जावेद अशरफ हमें सुन रहे हैं। जावेद थैंक यू। जावेद ने कहा थाविश भाई मैं तो हमेशा अकेला जाता हूँ भाई, मैं उनको लेके नहीं जाता। मलेका कहती है सिक्सर पर सिक्सर तावे छक्के पे छक्का, कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाए हो गाने आए।
1: नजर लग जाएगी।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: भाई बात हीरो या जीरो की हो ना हो, लेकिन बात ये है कि सुबह नहीं है अब शाम हो चुकी है यार। कमाल, पाकिस्तान में शाम, यूरोप और अमेरिका में सुबह, और यहाँ दोपहर। कंट्रोल से बाहर है ताबिश, अब लोग खाना बना रहे हैं यार, बस करो यार बस करो। बुध की दोपहर हो गई ताबिश।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट। ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है
3: लाइका रेडियो।
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208890880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागा Sun.
5: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
9: Your guzzle hit plays now on Leica Radio Greater Manchester.
0: Aur is hafte ki chauthi aur sabse badi ghazal.

0: जी हाँ जी, तमाम परदेसियों के नाम। आबिदा परवीन की आवाज बहुत अरसे से मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई थी। बहरहाल इस हफ्ते की ये तीसरी गजल थी साहब, और मैं समझता हूँ कि इस गजल ने आपको बहुत सी यादों को याद दिलाया होगा। ब्लैकबर्ड में शाहरोज हैं, शाहरोज कहती हैं वाह ताबिश भाई। ये गजल हमारे पास आई थी जी बरी से, राहेला जी ने भेजी थी, बहुत शुक्रिया आपका।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: जी करेंसी क्रिएट एक बार फिर से आपको बता दूं, करेंसी क्रिएट यूएस डॉलर 1.32 इंडियन रुपीज में 127.21, बांग्लादेशी टका 163.75, श्रीलंकन रुपीज 438.26 और अफगानी रुपीज 85.75।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Right, जनाब, साउथल वालों के पैगाम आपके लिए। दुबई के लिए बेहतरीन नई ऑफर निकाली है इन्होंने अभी, और एमिरेट्स एयरलाइन से आपको जाना होगा यकीनन। और ये ऑफर्स है जनाब 10 दिसंबर तक। ये कहते हैं कि £629 पर पर्सन थ्री नाइट के साथ, £629 पर पर्सन थ्री नाइट, ट्रेवल बाय 10 दिसंबर, 02088434444, southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: Right, जी, सोने का भाव हमारे यहाँ गोल्ड का रेट आज हो गया £100.58 पर ग्राम, और पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट 37,400 रुपीज।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: LIKA Radio. LIKA Radio, Greater Manchester, budh ki dopahar ho gayi, Wednesday afternoon. लखविंदर वदाली लाइव इन कॉन्सर्ट, पंजाबी लेजेंड लखविंदर वदाली फ्राइडे 16 अक्टूबर को आ रहे हैं क्रिस्टल ग्रैंड श्लोक, एंड संडे 18 अक्टूबर को आईसीसी बर्मिंघम में। और उसके बाद आ रही हैं जी कविता कृष्णमूर्ति, द लेजेंड कविता कृष्ण जी परफॉर्म करेंगे आपके लिए रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में। संडे का दिन होगा और 1 नवम्बर का दिन होगा। Brought to you by Santan Event as a Diwali special. Ticket from the venue box office, exclusive radio partner LIKA Radio.
1: Ye hai LIKA Radio.
2: LIKA Radio. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: Sunshine, skyscrapers and souks
4: for less than you think. This is affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners,
3: flying direct with Emirates, so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel, pay less, enjoy more.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
6: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
5: Jaimin Foods desi cravings, available at nearest ethnic grocery stores.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales at leicamedia.co.uk. The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

जी हाँ, फिल्म का नाम था खुशबू और डबल कैरेक्टर था इसमें अदाकारा मुमताज का। आज हमारी डायरी के पन्ने पे अदाकारा मुमताज, पाकिस्तानी सुपरस्टार, पाकिस्तान की मुमताज अदाकारा मुमताज आज ही के दिन कराची में पैदा हुई थी।

0: Today Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: जी हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि योनो एसबीआई मोबाइल ऐप के जरिए इंडिया के बहन भाइयों के लिए पैगाम कि इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या इनकी किसी ब्रांच में जाएं। आज का रेट दे रहे हैं ये ब्रिटिश पाउंड के बदले में इंडियन रुपीज 126 रुपए 15 पैसे।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। Formerly known as Asian Sound Radio, this is Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio.
1: Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio, Bradford, Midland, Leeds, Halifax, and Huddersfield. और लंदन में भी आप हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उसमें बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ताहिर सिद्दीक भाई वहां मौजूद हैं, योगेश भाई, गुलाम अली भाई। खाना खा लो, खाना खा लो, वक्त निकाल लो यार। मुझे भी भूख लग रही है। कहते हैं कि साहब, गलत बात पर गुस्सा आ जाना, गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है। हाँ, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना, उसी गुस्से को पी जाना ये मोमिन की निशानी है। बस ये अब अच्छी अच्छी बातें भी हुआ करेंगी। मोहब्बत की और रोमांटिक शेर व शायरी ताविश रोज करता है भाई। अब धीरे धीरे हम तब्दीली ला रहे हैं। वो क्या सुना था आपने? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। रविन भाई, नाश्ता कर लिया होगा आपने यकीनन। सबको सलाम कहा है आपने, गुलाम अली भाई को, कजूरी जी को, ताबीर को लाहौर में, फरीद भाई को कराची में, और अतीका जी को। अतीका जी आजकल नहीं है हमारी, अतीका जी आजकल दुबई में है, फिर पाकिस्तान जाएंगी। अच्छा, एक फरमाइश की है हमसे, बहुत दिनों के बाद आए हैं नदीम अजहर बाजवा बोल्टन में। कहते हैं ताबिश भाई, मेरा दिल था आज। भाई क्या दिल था? बिरयानी खाने का? नहीं, आपने कहा नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि आतिफ असलम की आवाज मुझे सुनाए प्लीज। चलिए जी, आतिफ असलम की आवाज सुन लें आप भी, हम भी सुन लेते हैं, कोई बात नहीं यार।

0: Hacker Radio.
1: जी हाँ, और जाते जाते ये मुकेश जी की आवाज का तड़का कैसा लगा आपको? योगेश भाई, मेरी तरफ से आपके नाम योगेश भाई। और अब विदा होने का वक्त, वही इकबाल भाई आपने कहा खुदा हाफिज मेरे भाई। लाहौर से पैगाम आया, अच्छा तो हम फिर चलें। हाँ जी जाइए। और मलेका कहती है ताबिश भाई ये टाइम कितना जालिम है, ये वक्त कितना जालिम है। जब दिल चाहता है कि वक्त आपके पास रहे, आपके साथ रहे, तो फिर वक्त आपका साथ नहीं देता। ऐदा ही होता है जी। रोबिन भाई कहते हैं जबरदस्त मुकेश का गीत ताबिश भाई, तो फिर आपके नाम हुआ फौरन आपके नाम जनाब। शहजाद कहते हैं जबरदस्त सॉन्ग थे ताबिश भाई, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का, बिस्मा आपका बहुत शुक्रिया, और महा महा आपका भी शुक्रिया। शुमाइल नवीद, आज के सारे गीत तुम्हारे नवीद के नाम भाई, खुश हो जाओ। कजोरी जी कहती हैं टाइम इज अप। हाँ जी कजोरी जी, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे गीत और आबिदा परवीन की गजल जो कि राहिल जी ने भेजी थी बरी से, जबरदस्त। अफीका जी का पैगाम बहुत लेट मिला, फूलों का गुलदस्ता। जाहिर है दुबई में है, टाइम टेबल का उन्हें पता नहीं है। उन्होंने सबको सलाम कहा है। डॉक्टर अल्ताफ अलवी ने सबको साथियों को सलाम कहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते एक सॉन्ग और होगा, मैडम नूरजहाँ की आवाज का होगा, और अदाकारा मुमताज पे ही गालिबन मैं समझता हूँ कि फिल्माया गया होगा। और एक और सॉन्ग था पंजाबी, मुझे नहीं मिल रहा। देखिए हमेशा मिलता है, मेरी आंखों के सामने आता है यहाँ स्क्रीन पे मेरे, लेकिन आज नहीं मिल रहा। चलिए जी बहुत शुक्रिया, भूख लगी है, खाना खा लो फिर आंखों की प्यास बुझा लो। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा पामान।
0: Even at Tabish, rolling out your favorite hits across the Northwest. This is Leica Radio, Great

0: The Magazine Show with Robina Khan.
1: प्रोग्राम में दो बैक टू बैक सॉन्ग्स आपने सुने. पहला गीत हमने लिया फिल्म धुरंधर द रिवेंज 2026 की फिल्म. इसमें आवाज अमेजिंग आवाज थी अरिजीत सिंह की फिर से. और उसके बाद जो गीत हमने आपको सुनवाया है उसमें आवाजें प्रीतम की थी, सुरेंद्र की थी और मोनाली ठाकुर की थी. फिल्म का नाम था रेस 2008 की फिल्म से इस गीत को लिया. और ख्वाब देखे ब्यूटिफुल ट्रैक, डिफरेंट ट्रैक, बहुत अस्सी के बाद प्ले होने वाला ट्रैक. सो बहुत से गीत आपके लिए, बहुत सी बातें आपके लिए और एक सवाल आपके लिए, क्योंकि आपकी भी तो अटेंडेंस भी होनी चाहिए और आपकी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, एक्चुअली इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, जो भी कहें कि आपको प्रोग्राम में शामिल करना हमारा मकसद होता है. सो बहुत से गीतों के साथ. और आज चूंकि वेंसडे है तो आज शॉर्ट हार्ट टचिंग स्टोरी नहीं होगी, लेकिन आज द कोट ऑफ द डे होगी. और ये कोई आम चलती फिरती कोट नहीं होती, इसको हम डी कोड करते हैं, इससे देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है. सो ये बात तो हमारे सेगमेंट की है और फिर खबर पर नजर भी होती है. और इसके अलावा आपके मैसेजेस हमें 07703403020 पर मिलते हैं. सो वो भी होंगे. पढ़ाते हैं प्रोग्राम को, आगे ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद मैं आती हूँ वापस.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months, featuring views, oasis, oceans, elites, fashions, and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: कभी कभी कैच द एवरग्रीन क्लासिक कभी कभी ऑन इट्स 50th एनिवर्सरी.
5: मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए.
4: दिस संडे फ्रॉम 2 PM एट योर नियरेस्ट शोकेस सिनेमा.
5: हमने तय किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते से नहीं गुजरेंगे.
4: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. लॉग ऑन टू showcasecinemas.co.uk/saff/uk.
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
7: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
8: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
9: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-180. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
10: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocenter.org, assuming you want to get noticed.
11: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: सजी लाइक रेडियो गजल्स, क्या जबरदस्त आवाज के साथ ये एकदम शुरू होता है कि बंदा ढक से रह जाता है। हम इंतजार करेंगे लाइक रेडियो गजल्स का। सो इस वक्त अपने सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि जोहर की अजान मैनचेस्टर और ग्रेटर मैनचेस्टर वालों के लिए और सुना जाता है चूंकि हमारा लाइक रेडियो दुनिया भर में और अब लीड्स में, ब्रेडफोर्ड में एंड हडर्सफील्ड में, तो आप से दरखास्त है कि आप अपने मकामी मस्जिद के टाइम टेबल को फॉलो करें।
12: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए tarikhalal.com।

0: तारिक हलाल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, home of London's Leica Radio and Leica Gold.
2: मैंने दिल में छुपाया

0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो जी अगर आपने मनी सेंड करनी हो तो एक्सचेंज रेट की बड़ी जरूरत होती है. आपको बता देते हैं कि आज 1 पाउंड के एक्सचेंज में US डॉलर मिलेंगे 1.32 डॉलर्स, इंडियन रुपीस 127.21, पाकिस्तानी रुपीस 367.15, बांग्लादेशी टका 163.75 और श्रीलंकन रुपीस 438.26, अफगानी 85.75
0: अफगानी. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. A LIKA Radio classic.

0: मैगजीन शो विद रुबीना खान।
1: जी बिल्कुल, मैगजीन शो आप सुन रहे हैं
0: लाइक अ रेडियो।
1: आज अक्टूबर के महीने की है 7 तारीख और आज बुध का रोज है सन 2026। आज की तारीख के हवाले से कुछ अवेयरनेस है आप तक पहुंचा देती हूँ। यू मैटर टू मी टुडे, ये आज के दिन में है। वो लोग जो आपके ज़िंदगी में मैटर करते हैं या आपको सोचना पड़ता है कि किसी वक्त बैठ कर के हाँ कोई है आपकी ज़िंदगी में जिस जो मैटर करता है, तो जस्ट इट्स अवेयरनेस या आपने आपको बताना है कॉन्शियसनेस मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है वर्ड के। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो बहुत करीब हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कम्युनिकेशन है, क्या मसला, ज़बरदस्त, ये अच्छी बात है कि पीसफुल रहना, पीसफुल कम्युनिकेशन बेस्ट सोल्यूशन है टू एनी बिग से बिग इशू के हवाले से भी। सो और एक आज डे जो इंटरनेशनल वॉक टू स्कूल डे है, बच्चों को स्कूल छोड़ना जाना हो तो वॉक करें या साइकिल पे छोड़ के आए, एक्सलेंट। और क्या है कि हाँ कितना अच्छा मौसम है, वो कल मैंने कहा था कि ऐसे मौसम के तो सदके उतारने वाला है, ये क्या हो गया। आसमान वालों को हम पर बहुत ज्यादा रहम आ गया है और हमसे बहुत मोहब्बत का इजहार हो रहा है जो ऐसा मौसम हमें मिल रहा है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हर हर पल, हर हर घड़ी जो है उसको ऐसे ही गुजारें कि उसकी खूबसूरती आपको महसूस हो, जज्बातियत की हद तक महसूस हो, इस खूबसूरत मौसम को, इन हवाओं को, इस सूरज की हल्की सी गर्मी को जरूर महसूस करें। इसके साथ आपको टेस्टी ट्रैक की तरफ लेके चलती हूँ। आज बहुत सी अवेयरनेसेस है, उनके बारे में बात करेंगे लेटर ऑन।
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: इस तरह के गानों के, कोई मजा नहीं है, जिंदगी का ही मजा नहीं है तो प्रोग्राम का क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा।
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater Manchester.
0: सर जी, आपको बताना चाहती हूँ कि आज बहुत सी सेलिब्रेशन है या अवेयरनेस है, यू मैटर टू मी, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस डे, इनर ब्यूटी डे। इनर ब्यूटी तो बहुत बड़ी चीज है आजकल, जो सुपरफिशियल या आउटर ब्यूटी की तरफ हम लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं और देनी भी चाहिए। हमेशा से लोग देखते आए हैं और हमेशा ये सोचते आए हैं, करते आए हैं कि इंसान को अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट द इनर ब्यूटी? वो अच्छी होती है इनर ब्यूटी तो आउटर ब्यूटी भी कुछ अच्छा असर डालती है, वरना ये दो मुख्तलिफ चीजें साफ दिखाई देती हैं। आप कभी सोच के देख लीजिएगा कि बाज लोग बहुत खूबसूरत दिख रहे होते हैं, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ इनर ब्यूटी कोई खूबसूरती नजर नहीं आती उसमें। आपको मे बी आप एग्री करें, मे बी आप डिसएग्री करें कि खूबसूरती तो खूबसूरती होती है। एक और चीज जिसके बारे में हमें रियली बहुत अवेयर होना चाहिए वो है आज वर्ल्ड कॉटन डे। जो लोग कॉटन बनाते हैं, यानी जो काम करते हैं इस ये सारा फील्ड में, वो उधर से लेकर जहां तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कपड़े बनते हैं, फैशन है, लोगों की जिंदगियां इस पर डिपेंड करती हैं, लेकिन कितना सस्टेनेबल ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सी जिंदगियां भी बचाता है, क्योंकि बाज़ लोग तो कोई ऐसा फाइबर पहने नहीं सकते जो कि 100% कॉटन ना हो, या कितना रिलैक्सिंग होता है, ब्रीदेबल होता है। यानी कॉटन को सेलिब्रेट करना मेरे ख्याल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हैविंग सेड दिस, मुझे एक बात कहनी है आपसे कि आज का जो सवाल है वो नोट कर लीजिए और जवाब दीजिएगा मुझे, ख्वाह आप उसको वॉइस नोट पर दें या एक सिंपल लाइन में लिखकर भेजिए, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आपके टाइम पर कि आपके पास कितना वक्त है। हम कहते हैं दिन महीने साल बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं हम आगे की तरफ जिंदगी में, क्या इंसान वाकई बदल जाता है? क्या इंसान वाकई बदल जाता है या सिर्फ अपने रवैये से अपने आप को छुपाना सीख लेता है? क्या इंसान वाकई बदल जाता है या अपने रवैये से उसको छुपाना सीख लेता है?
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: इस म्यूजिक के साथ ही आपको पता चल गया होगा कि जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, लेकिन अभी जो आवाज सुनेंगे, बहुत लोगों ने गाया है इसको, मेहदी हसन की आवाज।

0: at the Golgapianda Pani.
1: All Monster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
4: आप हो का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: The Magazine Show with Robina Khan.
2: जी लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर द मैगजीन शो आप सुन रहे हैं और आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और ऑब्वियसली हमारे आज के सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इंसान वाकई बदल जाता है या सिर्फ अपने रवैये या बिहेवियर जो है उसको छुपाना आ जाते हैं। ये एक अपने कहते हैं ना कि सेल्फ असेसमेंट का एक तरीका है कि हम करते क्या हैं लाइफ में। सो यही सवाल आपसे है और इसमें लोगों की बात नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं ना कि लोग ऐसा करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूं। अभी मैंने मैसेज सुने नहीं है लेकिन आई होप कि आप इस चीज को एड्रेस करेंगे। क्या इंसान वाकई वक्त के साथ बदल जाता है या इसे अपने रवैये अपने बिहेवियर्स को छुपाना आ जाता है, अकलमंद हो जाता है यानी कि सयाना हो जाता है।
3: Sunshine, skyscrapers and souks
4: for less than you think. This is affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less. Enjoy more.
4: Southall Travel. At all protected.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
7: Dil ne ye kaha hai dil se bole
6: chudiya. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner. Leica Radio Network.
8: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
9: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
8: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.

0: इतना टाइम हो तो इंसान अपनी बात बड़ी अच्छी तरीके से समझा सकता है। आजकल कुछ याद नहीं रहता, तुम्हारी याद आने के बाद और कुछ याद नहीं रहता, यही कुछ मोहम्मद अजीज कह रहे थे नगीना फिल्म में। न जाने गाना किसने लिखा है, लेकिन बहरहाल सुना तो हमने है, हम जानते हैं।
1: खबर पर नजर विथ रुबीना खान,
0: लाइक हर रेडियो। आज आपके लिए खबरें तो बहुत है, लेकिन मैं एक या दो सेलेक्ट करूंगी आज के लिए भी, और ये जो इम्पोर्टेंट है ये आज की तारीख के हवाले से, कोशिश तो यही करती हूँ। बहरहाल 8 माह खिला में रहने के बाद, यानी स्पेस में रहने के बाद, 4 खिलाबाज जमीन पर 7 अक्टूबर को वापस आए हैं, उसमें उनके साथ 12 क्रू के लोग भी शामिल थे। 237 डेज खिला या स्पेस में रहने के बाद वो वापस आ रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि खिला में ग्रेविटी नहीं होती, इंसान उड़ता फिरता रहता है। एक वीडियो इन लोगों को जारी करनी चाहिए, और करते भी होंगे, नासा उनकी वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा कि इन्होंने 237 डेज, दिन और रात पता नहीं वहां पर क्या होंगे, एक ही सा वक्त होगा, तो क्या किया उन्होंने। और वो कोई सैर करने नहीं गए थे, सैर करने के लिए नहीं, बल्कि बहुत से अहम साइंसी तजुर्बात उन्होंने किए हैं। और जब वो वापस जमीन पर आते हैं तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और खास किस्म की ट्रेनिंग होती है, तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वापस ग्रेविटी के साथ डील करने के लिए। सोचिए अगर हम 8 माह खिला में स्पेस में रहें, दोबारा जमीन में आए, और जमीन की ग्रेविटी आपको नीचे एक ही तरफ खींचती है, तो ये सब चीजें आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इनसे आने वाले दिनों के लिए बहुत सी मालूमात मिलती हैं। एक और बहुत बड़ी एक जो कहना चाहिए कि दरियाफ्त है, वो है कि घोस्ट पार्टिकल ढूंढे गए हैं। और जैसा कल भी मैंने आपको बताया था कि नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो उन प्राइज में कल हमने मेडिसिन की बात की थी, और आज तिब पर बात है और फिजिक्स पर बात है, जिसमें दो अमरीकी माहिर तिबियात फ्रेंसिस हेल्जन का नाम को ये इनाम दिया गया है। उनकी दरियाफ्त क्या है ये, या उनकी फाइंडिंग क्या है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। और वो अभी कुछ देर पहले जैसे कहा कि घोस्ट पार्टिकल, इस अमरीकी माहिर एक्सपर्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि दुनिया में घोस्ट पार्टिकल होते हैं, ये जर्रात तकरीबन बगैर किसी रुकावट के कहीं भी एंटर हो सकते हैं, और अरबों नूरी साल, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी दूर ये कायनात में की मालूमात ला सकते हैं। वो पार्टिकल जो इतने हल्के हैं या इतना उनमें कैपेसिटी है, ताकत, कहीं से भी गुजर जाते हैं और वो अपने साथ मालूमात वापस ला सकते हैं, यानी कितने मिनिमल जर्रे हैं कि उनको कोई एक जगह नहीं चाहिए जाने के लिए, लेकिन मालूमात वो बहुत बड़ी ला सकते हैं अपने अंदर चस्पा करके, ये कह लूं अगर मैं तो। एक और ये क्या करने के लिए भेजा है, साइंसदानों ने अंटार्कटिका में बर्फ के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब नीचे इन जर्रात को भेजा है, और खास तौर पर जैसे लेबोरेटरी का, ऑब्जर्वेटरी का काम होता है, ताकि ये देखें कि जमीन के अंदर क्या है, जमीन के ऊपर क्या है, और क्या इंसान क्या किस दुनिया में रहता है, और यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जमीन, जिसको हम आसमान कहते हैं, और जमीन, और यह हमारे इर्द गिर्द में किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं, उनको उनका प्रोसेस क्या है। जब हम ये देखते हैं कि ये सब चीजें हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी में इतना काम आएंगी, तो इंसान हैरान हो जाता है। और यकीनन हम आपकी जिंदगी, खाना खाते, काम करते, गाड़ी ड्राइव करते हैं, लेकिन ये साइंसदान जो है दिन और रात लेबोरेटरीज में बैठकर इन चीजों पर गौर फिक्र करते हैं।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica.

0: latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Aaj 1 gram gold ka rate hai £100.58.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
3: Ye hai.
4: Leica Radio.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Extra Podcast Update.
1: सो जी नई पॉडकास्ट की अपडेट आपको दे दें लाइक एक्स्ट्रा की इनसाइट इनटू फॉस्टर केयर होस्टेड बाय रूबी रजा और फ्रॉम फॉस्टरिंग वर्सेस अडॉप्शन एंड द अप्रूवल प्रोसेस टू फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द सपोर्ट अवेलेबल टू केयरर्स. ये एक बहुत ही इनसाइट ऐसी है जिस जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो लाजमी है कि वो इस पॉडकास्ट को देखें कि किस तरह वो फॉस्टर केयरिंग कर सकते हैं. और इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए मुकम्मल तौर पर लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर.
0: Leica Extra is here. The magazine show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
5: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
7: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11.
9: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11,
9: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
12: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208 518 9100. Tickets to India, bringing India closer.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: Hi, this is John Abraham.
14: Hi, I'm Deepika Padukone.
15: Hi, this is Papon.
16: Hi, this is Ehsan from Shankar Ehsan Loy.
17: Hi, I'm Nadeem Saifi from the Nadeem Shravan Jodi.
18: Hi, it's Ankit Tiwari.
19: Hi, this is Saleem.
20: Hi, this is Suleiman from Saleem Suleiman. Keep listening to us.
2: Like a radio.
21: नीसा नासिर लाइक अ गुड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में.
1: सो आपको बता दें कि ट्रेवल टू दुबई विदाउट अ हैवी प्राइस टैग और साउथ हॉल ट्रेवल आपको अफोर्डेबल ऑफर दे रहे हैं कंबाइन विद एक्सक्लूसिव डील्स एट सिलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद फ्लाइट्स एज वेल. और एमिरेट्स की फ्लाइट्स और आपको बता दें £629 पर पर्सन फॉर 3 नाइट्स ट्रेवल बाय 10th of December तक अगर आप ट्रेवल करते हैं 629 पाउंड पर पर्सन 3 रातों के लिए आप ठहर सकते हैं. हैं और इसके अलावा कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-843-4444 और विजिट southholltravel.co.uk.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. 90s throwback plays now.
15: Like a radio.

0: Zaika Radio.
1: जी अब वक्त है आपके मैसेजेस टेक ओवर करेंगे प्रोग्राम को और मैं पहला मैसेज आज भेजा था अस्सलाम वालेकुम रूबीना वेलकम लवली टू हियर योर वॉइस शुक्रिया मलिका आपका ये मैसेज था और एसपी सजाद आपने अस्सलाम वालेकुम लिखा रूबीना खान जी कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी मोहम्मद अयूब आपने लिखा आपने कहा कि पहले तो आपने गाना भी रिक्वेस्ट किया है लेकिन हमारे सवाल के जवाब में एक्चुअली मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपने यस गाना भी रिक्वेस्ट किया लिखा है आपने कि लोग बदल जाते हैं रूबीना खान साहिबा मैंने देखा है लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं मौसम की तरह बदल जाते हैं तो अगर ऐसा मौसम है अच्छा बदल जाएं तो अच्छी बात है लेकिन बहरहाल आपने कहा कि लोग बदल जाते हैं मैंने ये अर्ज की कि आप अपना अगर लोगों से मुराद अपना आप है हम अपनी बात करें ना कि हम बदलते हैं या नहीं बदलते तो सवाल मेरा डायरेक्ट अपने सेल्फ से है जिस तक ये आवाज आ रही है आपके सेल्फ तक है यानी आपने खुद बताना है कि आप बदलते हैं या नहीं बदलते सो लोग बदल जाते हैं ये कहना तो सबसे आसान है दुनिया की बात जो है ना कि हाँ जी लोग बदल गए और फिर सुफियान आपका मैसेज है और आपने कहा कि बदलते हैं रिलेशनशिप लव फ्रेंडशिप हार्ट ब्रेक डिसअपॉइंट जो है वो बिहेवियर्स पर रवैयों पर असर डालते हैं और इंसान उसे बदलता है ये तो बात ठीक है इसी तरह तो इंसान की जो है तब्दीली आती है प्लस ये कि मैच्योरिटी ऑफन अंडरस्टैंड देमसेल्फ डिफरेंटली मैच्योर पीपल ऑफन अंडरस्टैंड देमसेल्फ डिफरेंटली आपने कहा और डिसअपॉइंटमेंट ऑफ पीपल्स बिहेवियर एनीवेज ये बात थी सुफियान आपकी आपने कहा कि लोग बदलते हैं और इंसान अपने हालात से बदलता तो है इसमें क्या शक है और नसीर अहमद आपने लिखा है भट्टी आपने नसीर अहमद भट्टी आपने यूँ लिखा है कि आप बीच बीच में बदल जाती हैं मैं अपनी तो बात नहीं करी मैं अपने लिए अपनी बात करूंगी आप अपने वक्त में अपने लिए बात करें कि आप बदलते हैं या नहीं यानी इन जनरल लाइफ की बात हो रही है सही है ना जी मैं मैसेज सारे पढ़ देती हूँ जो भी आपने लिखा हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर शिराज आपने मैसेज किए हैं और एक्चुअली आप चूंकि वॉइस नोट करते हैं मेरा दिल चाहता है कि वॉइस नोट सुना दूं बजाय इसके कि मैं खुद ही बताऊं लेकिन मैं चूंकि सुन चुकी हूं इसलिए मैं आपकी बात को बता देती हूं और आपने कहा है कि इंसान बदलता है और बदलना पड़ता है वरना जालिम समाज आपको कहीं का रहने नहीं देता ये आपने कहा है कि इंसान बदलता है और एक्चुअली किसी ने ये नहीं बताया कि क्या इंसान छुपाना सीख लेता है अपने आप के बिहेवियर के जरिए या वो वाकई ही ऑल टुगेदर ही बदल जाता है यानी ये दो डिफरेंट चीजें हैं इंसान वही रहता है जो शुरू से है लेकिन उसको ये पता होता है कि कहां पर क्या कहना है और कहां पर कोई चीज छुपा लेनी है इसमें कोई बुरी बात नहीं है ये कोई हिपोक्रेसी नहीं है या ये कोई क्या कहते हैं दोगलापन नहीं है इंसान को डिसेंटली दुनिया में रहना होता है कहां पर क्या बात करनी क्या इंसान वाकई जाहिर है एक एज के साथ साथ इंसान मैच्योर होता है इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन क्या वो वाकई अंदर से बदलता नहीं है मेन क्वेश्चन ये है कि वो बदलता नहीं है और अपने आप को बदला हुआ दिखाता है यानी अपने आप को छुपाना सीख लेता है ये मेरा क्वेश्चन था लेकिन शिराज आपने लिखा है या आपने वॉइस नोट किया है कि इंसान को बदलना पड़ता है वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है और जमशेद जी आपने लिखा है कि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है और अच्छा बदले तो अच्छा इंसान बदलता है अच्छे उसमें बदलाव आते हैं और बुराई की तरफ जाए तो बुराई की तरफ बदलाव आते हैं तो बदलता है इंसान बदलता है सो तारिक ऐवान आपने लिखा है कि जी हाँ सच है वक्त के साथ इंसानी सोच रवैये तरजीहात और जिस्मानी हालत बदलती है तो आपने भी कहा बदलती है लेकिन क्या इंसान अपने आप को वही रहता है लेकिन सोच की बात है जो आपने कही
0: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: सोच की बात करते करते चलिए जी बिजनेस की बात करते हैं और बिजनेस ये कहता है कि अगर आप मनी सेंड करेंगे तो 127.21 इंडियन रुपीस मिलेंगे आपको 1 पाउंड के एक्सचेंज में एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप टीज एंड सीज अप्लाई
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Rubina Khan.
2: Like a radio.
3: Weddings,
2: सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, राग हसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
4: Sunshine, skyscrapers and souks
5: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Laika Radio. Listen to Laika Radio Greater Manchester on LaikaRadio.com and Laika Radio mobile app. Across Greater Manchester on 1377, 963 AM and DAB. And now also in Bradford and Leeds.
9: This is Laika Radio.
10: The top stories this hour. Kemi Badenoch announced reforms to inheritance tax if the Conservatives win the next election. Closing her party's conference, the Tory leader promised to remove it on family homes, but stopped short of abolishing it altogether. She says they'll also allow couples to leave an additional £1 million tax-free. Here's the reaction from delegates in Birmingham.
11: I am going ka-ching because that is going to affect us personally, which is fantastic.
12: It's the best I've ever heard. And it promises so much of the future for everyone in the country. I thought it was tremendous.
13: I think they're going to start to see that we are back and we are here to win and fix the country.
10: Labour claims the Tories haven't changed. A man accused of murdering Anne Widdecombe has appeared in court, charged over an alleged terror plot against Nigel Farage. 28-year-old Joshua Kerry is accused of researching targets and trying to get into the home of the Reform UK leader. Royal Mail's announced plans to cut up to 2,500 jobs by the end of next year. The company insists postal workers and drivers won't be affected. Five people have been arrested on suspicion of inciting racial hatred outside the Board of Deputies of British Jews. Protests in London are happening on the anniversary of Hamas' October 7th attacks on Israel. Arsenal manager Mikel Arteta has signed a deal with the club until 2030. The Spaniard delivered their first Premier League title in 22 years last season and took them to the final of the Champions League. Former Arsenal striker Alan Smith says fans will be relieved.
14: I don't think there was any real suggestion that he was going to go somewhere else, but there'll be no shortage of suitors in the European game. Some of the European giants, I'm sure, would have had their eyes on him because he's clearly a very talented manager and coach. So, yeah, really good news.
10: And Hayden Panettiere's former fiancé Vladimir Klitschko claims jewellery belonging to the actress has been sold to a pawn shop by someone not in her family. The former boxer's filed for temporary guardianship of her estate as they share a daughter, Kaya. From Sky News, that's the latest.
0: This is Laika Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Laika Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: मैनचेस्टर और ग्रेटर मैनचेस्टर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 14 और मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा. लीड्स में आज 14 एंड 6 डिग्रीज, वहां पर भी सेम सिचुएशन है, जबकि ब्रेडफोर्ड एंड वेस्ट यॉर्कशायर में 13 और 6 डिग्रीज के दरमियान टेम्परेचर की फोरकास्ट है.
0: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉल साउथ ऑल ट्रैवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250.
1: प्रोग्राम का थर्ड एंड फाइनल आवर और मैं रुबीना खान द मैगजीन शो लेकर आपके साथ मंडे टू थर्सडे रहती हूँ और मैगजीन शो में बहुत कुछ आपके लिए पेश किया जाता है. बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, जहाँ कहीं भी आपने हमें सुना है. थैंक यू सो मच. आदाब, तस्लीम.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, Greater Manchester. A new Asian sound for the northwest of England. 963 AM and 1377 AM. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica. Rubina Khan. Now every Monday to Thursday at 1 PM on Leica Radio, Greater Manchester.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Like a radio.
2: सो जी बिल्कुल लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर द मैगजीन शो आप सुन रहे हैं रुबीना खान के साथ. हमारा आज का सवाल था आपसे कि इंसान क्या वाकई वक्त के साथ बदल जाता है या फिर वो अपने बिहेवियर्स को छुपाना सीख जाता है. बहुत से लोगों ने बहुत से जवाब दिए लेकिन अभी तक मैसेजेस के जवाब आ रहे हैं, मतलब सवाल के जवाब आ रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको शामिल करूँ प्रोग्राम में. आपकी बड़ी मेहनत है और यही चीज़ है जो लोग सुनते हैं, उनको पता चलता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है लोगों के साथ, क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं. सो अभी महा आपने मैसेज किया है और आपने लिखा है कि ओ माय गॉड रुबीना आपने कमाल, अच्छा ये गाना है कमाल कर दिया जो मैंने, वो मेरा क्या कमाल है, मैंने एक गाना प्ले किया. तो नदीम अजहर बाजवा आपने लिखा है कि बहुत अच्छा गाना आपने प्ले किया और आप कहीं बाजी के साथ जाकर जुड़ गए. चलिए ये आपका आपने गाने की तारीफ की और काश वो गाना हम ही गाते होते. एनीवेज ये जस्ट जोक है. और आपको गीत अच्छा लगा ये भी हमें फीडबैक चाहिए होती है ताकि पता चले कि कैसे गीत हमें प्ले करने चाहिए. सो कमिंग बैक टू महा का मैसेज था एक्चुअली जो पीछे रह गया था और वो ये आपने लिखा कि इंसान को लोगों के रवैये बदल देते हैं. ये तो अदर वे राउंड हो गया लेकिन असल में तो यही है. कोई चीज़ किसी चीज़ पर ज़र्ब लगाती है तो इंसान या कोई भी चीज़ वो बदलती है, टूटती है, फूटती है, संवरती है. तो आपका कहना मुझे अच्छा लग रहा है ये कि इंसान को लोगों के रवैये बदल देते हैं. जैसे मुझे, अच्छा आपने लिखा है कि मेरे हस्बैंड के बुरे रवैये ने मुझ पर बुरा असर डाला, पहले मैं ऐसी नहीं थी. तो आपने ये लिखा है लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप जैसे पहले थी वैसे हो जाएं ताकि आप अच्छी हो जाएं. कि बुरे रवैये से कुछ अच्छा ही इंसान को सीखना चाहिए. हम क्यों अपने आप को प्रेजेंट कर दें कि हम ख़राब हो जाएं या हम अपने आप को दुखी कर लें. दुखी होना भी तो अच्छा रवैया नहीं है. बहरहाल आपकी राय का मुझे एहतराम है और आपने कहा कि आपको आप बदल गई. रुखसाना आपने लिखा है कि गुड नून रुबीना जी, लिसनिंग लाइक अ मैनचेस्टर मिक्स म्यूजिक जबरदस्त. ओके जी शुक्रिया. और अभी एक और मैसेज था, अगर मुझे मिल गया मैं जरूर प्ले करूंगी. खामोश लिसनर आप आखिरकार बोलने लग गई या लग गए, आई डोंट नो, जो भी हैं आप. अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी, खामोश लिसनर है. सब खुश, सब कुछ बदलता है और बदलना भी चाहिए टाइम के साथ साथ, यही जिंदगी है. अच्छा जी. और जैसे आप पूछ रही हैं ना, नेचर कांट बी चेंज, बस ऐसे शो करना पड़ता है कि हम बदल गए. तो आपने ये कहा कि हम एक्चुअली में असल में बदलते नहीं हैं लेकिन हम बदलना कैसे छुपाना सीख जाते हैं. बदलते नहीं है, इनसाइड हमारी स्टोरी वही रहती है, यही आप कह रही है ना. लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि किस हमें छुपाना आ जाता है, वही जो हमारे सवाल का एक हिस्सा है. सिंपल अगर मैं कहूँ तो यही है. सो ये मैसेजेस थे ज्यादातर तो यही है ना जी कि बदल जाता है इंसान, बदलना पड़ता है. और कुछ लोगों ने डायरेक्ट कहा कि नहीं बदलता कुछ नहीं है, हमें उसको ऐसे शो करना आ जाता है कि जो कि सही हो दुनियादारी के लिए.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: So, currency exchange rate आपको बता देती हूँ. US डॉलर आपको आज मिलेंगे 1.32, इंडियन रुपीज मिलेंगे 127.21, पाकिस्तानी रुपीज 367.15, बांग्लादेशी टका 163.75, श्रीलंकन रुपीज 438.26, अफगानी 85.75 अफगानी.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio. Formerly known as Asian Sound Radio. A Leica Radio classic. Plays now.

0: Quote of the day with Rabina Khan.
1: So, चलते हैं आज की कोट की तरफ और आज की कोट है राल्फ वाल्डो एमर्सन की लिखी हुई. द ओनली पर्सन यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी. आपको आखिरकार वही इंसान बनना है जिसे बनने का फैसला आप खुद करते हैं. राल्फ वाल्डो एमर्सन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ये अमरीकी फलसफी थे. इनकी तहरीरों में खुद एतमादी, इनफरादी आज़ादी यानी इंडिविजुअल फ्रीडम, नेचर और अपनी अंदर की आवाज़ यानी इनर जो आपकी एक आवाज़ या फीलिंग होती है उस पर भरोसा करने जैसे मौजूद थे जिनको इन्होंने अपनी राइटिंग्स में जगह दी है. इनकी मशहूर किताबों में नेचर और सेल्फ रिलायंस शामिल हैं और इनका जो ये कॉल है कि हम वही होते हैं जो हम बनना चाहते हैं, इस कॉल का खूबसूरत पहलू यह है कि एमर्सन हमारी तवज्जो दिलाते हैं कि किस्मत को ब्लेम ना करें. किस्मत से ज्यादा इंतखाब करने की तरफ वो हमारी तवज्जो दिलाते हैं कि जिंदगी हमें बहुत सी सूरत हाल देती है लेकिन हम इन हालात के जवाब में क्या बनते हैं इनमें हमारे अपने फैसलों का किरदार होता है. हम खुद डिसाइड करते हैं और बाज़ूकात ये होता है हम कहते हैं हमारे शायद हालात हमारे हाथ में नहीं थे, इन हालात में हम कौन बनेंगे, ये फैसला कौन करेगा, हमारा अपना कब था, ये तो हमें ऐसी चीजें मिली हैं. लेकिन खासतौर पर ऐसा कहना बिल्कुल ठीक भी नहीं है क्योंकि अगर हम इसको डीपली देखें तो हम कहते हैं ना कि मुझे मौका नहीं मिला, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत ही ऐसी थी. लेकिन एमर्सन हमें याद दिलाते हैं कि हमारे हालात पूरी शनाख्त नहीं होते. जिंदगी में कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, कुछ होती हैं और कुछ नहीं होती. जो नहीं होती उनमें ज्यादा से ज्यादा ये है कि हम कहाँ पैदा होते हैं, हमें कौन से मौके मिले, कौन सी मुश्किलात आई. लेकिन एक चीज बड़ी हद तक हमारे हाथ में रहती है, जो भी हमें गिवन सर्कमस्टांसिस है इसमें हम अपने आप को क्या बनाते हैं. एक शख्स मतलब एक मुश्किल तजर्बे के बाद उसको बुरे हालात मिले बिटर हो सकता है, दूसरा इसी तजर्बे से समझदार हो सकता है, पोलाइट हो सकता है, काइंड हो सकता है. एक शख्स नाकाम होता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, दूसरा बंदा नाकामी को सीखने का मौका यानी लर्निंग प्रोसेस समझकर खड़ा हो जाता है दोबारा से. तो इस कॉल का असल पैगाम ये है कि आपकी मंजिल वो नहीं जो जिंदगी आपके सामने रख दे, आपकी शख्सियत में इन फैसलों से बनती है जो आप हर रोज करते हैं. और शायद ये सबसे बड़ी अच्छी बात भी है कि इसको अपने आप को बदलने का फैसला किसी खास उम्र खास दिन का इंतजार भी नहीं करवाता. आप आज भी फैसला करते हैं कर सकते हैं कि मैं ये बनूंगा या मैं वो बनूंगी, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगी, मुझे अपनी शनाख्त खुद बनानी है, जो भी हालात हैं इन्हीं में मैंने बेस्ट बनना है. तो आज अपने आप से एक जरूर सवाल कीजिए, मैं भी करूंगी, कि अगर हमारी जिंदगी का अगला चैप्टर हमने खुद लिखना है, अपने फैसलों से लिखना है, तो मैं खुद को क्या बनाना चाहूंगी या मैं कैसा इंसान बनना चाहूंगी.
0: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.
1: एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी सिंगर जुनैद जमशेद. तो जुनैद जमशेद की आवाज में सुनेंगे आंखों को आंखों ने. एल्बम का नाम है उस राह पर.

0: और देखिए हमारे सामने की बात है कि जो लोग जो सिंगर्स जिनको हम जानते हैं सोशल मीडिया की वजह से या जो सिंगर्स होते हैं वो नहीं भी रहते, हर किसी ने जाना होता है, लेकिन उनकी आवाज़ या उनके अच्छे काम याद रह जाते हैं, कितनी बड़ी बात है ये।
1: This gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: सो आज का गोल्ड रेट 24 कैरेट गोल्ड और 1 ग्राम का जो रेट है वो 100 पाउंड एंड 38 पेंस है।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartyhanks.com।
0: ये है
1: Leica Radio।
0: सो आपको बता देते हैं कि कौन कौन से कॉन्सर्ट्स कहां पर हो रहे हैं। लखविंदर वडाली लाइव इन कॉन्सर्ट, पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली, फ्राइडे 16th अक्टूबर, नोट कर लीजिए, एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लॉ, और संडे 18th अक्टूबर एट ICC बर्मिंगम। कविता कृष्णमूर्ति लाइव, द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November। ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज अ दिवाली स्पेशल, टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। सो आप इन डेट्स को जो है वो सेव कर सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं। रागासन लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद अ प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन, डिटेल एट laikaradio.com।
1: द मैगजीन शो विद रुबीना खान।
2: For 15 years, Jennan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jennan. For you, for us and for everyone. The Jennan and J-Dot anniversary sale, up to 70% off, is now on. Visit our stores nationwide, including Bradford, Manchester and Glasgow. Or shop the sale online at Jennan.com and JunaidJamshed.co.uk.
3: Sunshine, skyscrapers and souks.
4: For less than you think. This is Affordable Dubai from South All Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: South All Travel. Pay less, enjoy more.
4: South All Travel. At all protect.
5: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
6: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
7: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on Drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio Greater Manchester.

0: Breaker Radio Network, broadcasting across Greater Manchester. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: नोट कर लीजिएगा, आज अगर आप एक्सचेंज रेट चाहेंगे इंडियन रुपीज में 1 पाउंड के तो 127.21 इंडियन रुपीज आपको मिलेंगे. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टीज एंड सीज अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with

0: traffic and travel.
1: Traffic remaining busy as you head around Prestwich tonight. Haywood Road remaining shut in both directions because of that sinkhole from Gilmore Drive through to Chatsworth Avenue. It's also busy heading out of Manchester on Mancunian Way from Ancoats through to Salford. And we're still seeing queues at Manchester on Great Ancoats Street as well, approaching Rochdale Road. Generally elsewhere, things starting to improve, certainly eastbound the M62 where we had that incident earlier, approaching Junction 20 where you meet up with the A627M at Rochdale. All lanes now reopen and traffic flowing freely. So it can be said Lawton, I know it was slow earlier on the East Lancs Road down towards the Newton Road traffic lights. Just watch out for a bit of a build up still clockwise the M60 as you head over Barton Bridge.
0: Drive is sponsored by Pepe's. Download the Pepe's app, the chance to win prizes with every order. You can now receive 25% off after every 6 orders. T's and C's apply. Leave a review to be in with a chance to win a £100 Pepe's voucher.
2: सर्दी का मौसम अपने साथ बहुत सारी मस्ती और खुशियां लेकर आता है और ये वक्त यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहेंगे लेकिन ये मौसम अपने साथ फ्लू RSV और कई दूसरे वायरसेस भी लेकर आता है जो आपको गंभीर तरीके से बीमार कर सकते हैं यहां तक कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है शुक्र है कि इनसे बचाव के लिए वैक्सींस मौजूद हैं बच्चों से लेकर नौजवानों तक और बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिनको खुसूसी एहतियात की जरूरत है जैसे कि हामला खवातीन कौन और कैसे इन वैक्सींस को ले सकते हैं इन मालूमात के लिए सर्च कीजिए NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस दैट इज NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
4: नो नीड टू फ्लाई बैक होम This summer holiday, come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: Sunshine, skyscrapers and souks.
6: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
5: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
6: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
6: Southall Travel. At all protected.
7: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
0: Next, Anissa Nazir with The Big Show.
8: Like a radio.

0: करूं।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

0: Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, इसीलिए कहा था ना कि जरा सुन लिया करें, जरा ध्यान तवज्जो दिया करें और फिर जवाब भिजवाया करें। लेकिन कोई बात नहीं, राजा रानी बनने की भी अपनी खुशी होती है। लिहाजा आपको बता दूं कि अब तक रुखसाना जी, उमर जी, अमित पटेल जी, जो कि अब कुछ सोच कर कुछ और जवाब भिजवा रहे हैं, उनको पता है कि पहले वाला ही एक्सेप्ट होगा। तो अमित पटेल जी के साथ साथ अंजुम जी, कुलबीर सिंह जी, नौशीन खान जी, मनजीत संगर जी, अब देखिएगा जगजीत संगर जी के फोन से कोई मैसेज आएगा, एंड आई होप कि वो सही वाला। नितिन जी, दीनी जी, ताहिर जी, सोबत खान जी, पॉल मसीह जी, सहर जी, अजिंक्या जी, अंजू जी, अली जी, पहले मेरे दिल में आया कि आपके जवाब को थोड़ा थोड़ा सही मान लूं, लेकिन नहीं, बात बनी नहीं। अरुणा जी, आपका भी जवाब सही नहीं है, और मैं बार बार कह रही हूँ, एक वर्ड नहीं है कॉमन।
0: Laika Radio Feel Good Classics with Anisa Nasir।
3: मैं हूँ इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में Laika Radio ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक।

0: मुबारक इनका महबूब आया, हमारा महबूब जा रहा है। ये ख्याल था कभी ख्वाब में तुझे देखते, ये ख्याल था कभी ख्वाब में तुझे देखते, कभी जिंदगी की किताब में तुझे देखते। मेरे माह तुम तो हिजाब ही में रहे, मगर हमें ताब थी तब ताब में तुम्हें देखते।
1: This is Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 127.8 Indian rupees, 85.5 Afghan Afghani, 366.1 Pakistani rupees, 162.8 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: The gold is currently trading at exactly 100 pounds per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: और रमनिक ठकरार जी, आपका मैसेज पाके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको गीत अच्छे लग रहे हैं और मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि मेरा चुनाव आपको पसंद आ रहा है। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। और अमिता जी, मुजम्मल जी, नीलेश जी और दीदी अडवाणी यानी कि भारती जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और फिर वैसे ही मैं बार बार एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि एक वर्ड नहीं है, अब चाहे उस वर्ड से ही रिलेटेड है, लेकिन मुझे पूरा जवाब चाहिए। अली जी पूछ रहे हैं क्यों मेरा जवाब क्यों नहीं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो आपका ड्राइविंग टेस्ट तो नहीं ना हो रहा कि मैं कहूँ कि हाँ आप सही ड्राइव कर रहे हैं। अब जवाब गलत है तो अली जी गलत है ना, क्या करूँ।
1: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर।
0: संध्या भावसर जी कहती है कॉमन है मौसम और बहार। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और भी तो है ना। शुरू से नहीं सुन रही क्या, कान पकड़ो, जल्दी से कान पकड़ो।

0: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: देर लगेगी,
1: और देर लगी मेरे सुनने वालों को समझने में, जानने में, बूझने में कि गीतों में क्या कॉमन है। मौसम था लेकिन मौसम वर्ड नहीं था, खिजा भी थी, बहार भी थी, पतझड़, बरखा, बारिश, सभी कुछ था। तो मतलब सीजन्स आप कह सकते थे, मौसम रिलेटेड कह सकते थे, लेकिन मौसम कॉमन नहीं था, हरगिज हरगिज नहीं था। बूझने वालों का भी शुक्रिया और ना बूझने वालों का भी। दिनेश पोपट जी, आपका जवाब भी सही है, और लुबना जी, शहजाद भट्ट जी, आपका जवाब सही नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस और भी हैं लेकिन इट्स टू लेट कि अब आप भिजवा रहे हो, लेकिन ज्यादातर गलत ही आ रहे हैं। लेकिन मतलब आपको मेंशन भी नहीं करी, मतलब ठीक से बदनाम भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन बेहद शुक्रिया वंस अगेन, एज आई ऑलवेज से कि जस्ट लाइट हार्टेड फीचर है, इसमें दिल पर लगाने वाली कोई बात ही नहीं। बूझ लिया तो ठीक है, नहीं बूझा तो अनीसा क्या बिगाड़ लेगी, कुछ भी नहीं। बस इसी बहाने पता चलता है कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, कौन दिल से सुन रहा है और सिर्फ कौन सिर्फ कानों से सुन रहा है। लेकिन आप सभी दिल से सुनने वाले हैं, तो ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम। गुड इवनिंग। सिंदूर है फिल्म का नाम, 1987 की फिल्म, सुरेश भाटकर जी, लता मंगेशकर जी, हमारी थीम का बयान करते हुए।

0: सुना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दिल में उतर कर सुनिएगा, ऐसे ऐसे गीत कानों ग्रस्त दिल में उतर जाएंगे, लिहाजा आप भी अपनी दिल की अथाह गहराइयों में झांकिएगा, फिर इन गीतों को सुनिएगा। आफताब गिल जी कह रहे हैं, अनीसा आज यू आर प्लेइंग लव सॉन्ग्स, तो रोज क्या मैं हेट सॉन्ग सुनवाती हूँ? ये क्या बात हुई आफताब साहब, कोई बात तो ना हुई? लव सॉन्ग्स ही होते हैं, सॉन्ग्स में लव के अलावा क्या होता है। वैसे अभी ये चेहरे से मुझे एक पंजाबी की दो लाइनें पता नहीं क्यों याद आ गई हैं, तो इसे मैं आपके नाम कर दूं आफताब जी। किसी ने क्या खूब कहा है कि लश पश ना वेख वेड़िया, वेख ना सुंदर मुखड़े, लश पश ना वेख वेड़िया, वेख ना सुंदर मुखड़े, हर मुखड़े दे अंदर दिले ते हर दिल दे अंदर दुखड़े। ओए होए होए क्या बात है, बस ऐसे याद आ गया, सोचा आपके साथ शेयर करूं और आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूं। मतलब इमरान खान साहब को आप जानते हैं, क्रिकेट के हवाले से तो पूरी दुनिया उन्हें जानती है, फिर बाद में उन्होंने जो कायद की हैसियत से भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उससे भी आप सभी खूबी वाकिफ हैं, और आजकल जो उन पर कड़े हालात हैं उनसे भी आप वाकिफ हैं। मैं सिर्फ एक तज़किरा कर रही हूं, तो एक क्रिकेटर हैं इमाद इरफानी जी, उनकी शक्ल बहुत मिलती है इमरान खान साहब से, तो उनको किसी ने सोशल मीडिया पर मशवरा दिया कि क्या, बल्कि ये कहना चाहिए कि दरख्वास्त की है, आप थोड़े दिन अड़ियाला जेल ही चले जाते खान साहब की जगह।
1: Like a Radio Network. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लोग भी कैसी कैसी बातें बना लेते हैं। £1 in British sterling can get you up to 127.4 Indian rupees today. तो भूलिएगा नहीं exchange and branch online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और लीजिए अब ये चंद अल्फाज आप सबकी नजर, ताकि आप बूझ पाए ये कौन सा गीत है। अब तारासी जी, आप दुबई क्या कर रहे हैं भाई? मतलब इस मौसम में अब यहीं रुके ना, मैं कहीं आ जा नहीं रही हूँ और आप लोग हैं कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कहते हॉलीडेइंग इन दुबई एंड लिसनिंग टू योर प्रोग्राम, टुडे इज आवर 48th वेडिंग एनिवर्सरी, माशाल्लाह। और कहते हैं मेंशन कीजिए जरूर अवतार जी, आपको और आपकी उनको वेडिंग एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक। वैसे नाम लिख देते हैं अब, मतलब 48th वेडिंग एनिवर्सरी पर तो नाम उनका मेंशन करना बनता है ना? नहीं, वो एक साहब थे आप ही की तरह, कोई 40-50 पता नहीं कितने साल हो गए थे शादी को, तो अपनी बेगम को कह रहे थे डार्लिंग माई स्वीट हार्ट लवली, तो पास बैठे शख्स ने कहा रे इतने साल हो गए शादी को, अभी भी इतनी मोहब्बत है आपकी? कहता नहीं नहीं यार, मुझे आजकल ना उसका नाम भूल जाता है, याद नहीं रहता। तो आप भी नाम तो नहीं भूल गए, जल्दी से उनका नाम बताइए ताकि हम उन्हें भी विश करें। लीजिए भाई ये अल्फाज, तन्हाई नहीं गले मिलकर कभी अपनी मुलाकातें, तन्हाई नहीं गले मिलकर कभी अपनी मुलाकातें।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live.

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: हाँ जी, तो मैं अब क्या कहूँ सिवाय इसके कि माजरत चाहूंगी. क्या हुआ कि चौधरी फरीद अहमद साहब खान साहब का नाम लेते हुए ना मैं थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी. ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं है. तो मैं इमाद जी को क्रिकेटर कहेगी क्योंकि वो क्रिकेटर इमरान जी जहन में रह गए ना. हो जाता है कभी कभी जज्बाती, ये बाती होने का यही तो नुकसान है. तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप जाना चाहते हैं दुबई, जैसा कि हमारे अवतार राशी जी और मिट्टू जी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाने गए हैं, तो ट्रेवल टू दुबई विदाउट अ हैवी प्राइस टैग. साउथ ऑल ट्रेवल अफोर्डेबल दुबई ऑफर्स कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सिलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट 629 पर पर्सन फॉर 3 नाइट्स. ट्रेवल बाय 10th of December. कॉल कीजिएगा साउथ ऑल ट्रेवल को 0208-843-4444 या फिर विजिट कीजिएगा southalltravel.co.uk.
0: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.

0: क्या बात है। और ये जोहरा जमी है मिट्टू जी और मना डे जी वाले अल्फाज जो हैं वो एक्चुअली अदा कर रहे हैं अवतार आसी जी, दुबई में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। वैसे एक जोक है, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं शेयर कर रही हूँ। वैसे सभी को ये गीत बहुत अच्छा लगा। विनोद जी का मैसेज आया, एजाज जी कह रहे हैं सदाबहार गीत, भारती जी कह रही है सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ग्रेट मूवी, अंजुम जी अमेरिका से वाह वाह वाह वाह कर रही है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और दिनेश पोपड़ जी, बाय द वे आपका जवाब गलत है हमारे उल्टे पुल्टे को लेकर। तो वो बात जोक नहीं है, एक बात है कि बाबा जी कहते हैं ओ यार मैं तो टीचर्स डे पे ना अपनी बीवी को ही प्रेजेंट लेके दूंगा, फूल शूल ये वो। तो किसी ने पूछा कि टीचर्स डे पे पत्नी को बीवी को क्यों प्रेजेंट लेकर देंगे। कहते यार जिंदगी में सबसे ज्यादा लेक्चर्स मैंने इसी से सुने हैं।
1: Like our radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Hi, chalo ji, haan sir, rok ke tumhe tanu rate das de. One British pound aaj aapko dila sakta 127.8 Indian rupees, 85.4 Afghan Afghani, 366 Pakistani rupees, 162.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: The gold is currently trading at £99.97 per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: पर मैं एक सवाल करना चाहती हूँ सोने से, और कितना गिरोगे? इतना मत गिरना कि नजरों से ही गिर जाओ।
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater Manchester.
2: पंजाबी तड़का विद अनीसा।
0: गुल जी इसी बहाने आपको अम्मी अबू की याद तो आई। वैसे ये दिल में रहने वाले दिल से कहाँ निकलते हैं, इसी तरह मेरे गीतों से कभी किसी को अपना महबूब महबूबा, कोई दोस्त, कोई प्यारा सा रिश्ता, बहुत मुकद्दस सा रिश्ता है, जैसे अभी अभी आपने मेंशन किया। तो हमारा मकसद यही होता है आपके दिलों के तार छेड़ना। छिड़ गए ना, नहीं रह सकती बिन तेरे। मैं नहीं, नूरजहां जी कहती हूं।

0: जीरा ब्लेड, ये था फिल्म का नाम. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुनव्वर शरीफ जी थे जिन्होंने जीरा ब्लेड का किरदार अदा किया था. बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे एजाज साहब पहुंचाएंगे. एजाज साहब जरा जल्दी करें, आप मेरे गूगल हैं ना, अब मैं क्यों गूगलाऊं, आप ही से पूछ लेते हैं, बल्कि आप पूछे बिना ही मुझे बताओगे. अभी तक क्यों नहीं बताया आपने मुझे, सच्ची में ही टाइपिंग. आई लव इट. और लीजिए दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि आपके कानों तक पहुंचेगा उल्टे पुल्टे की शक्ल में. बहुत सारे लोगों ने सीधा किया, जिनमें सबसे पहले रानी ऑफ द आवर बनी प्रीति जी, जवाब पहुंचाकर हम तक ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी. अजिंकिया जी, गीता हर्षद जोशी जी, निम्मी जी, फरजाना जी, उल्लास जी और प्यारे से करसन पिंडोरिया जी, आपके जवाब सही हैं. दिनेश पोपट जी और रीटा जी, आपके जवाब सही नहीं हैं. देखा आ गया. जी हाँ बिल्कुल, मुनव्वर शरीफ साहब की हद तक तो मैं बिल्कुल सही थी. कॉमेडी फिल्म थी, हजी कादरी जी ने बोल लिखे थे इस गीत के, नजीर अली साहब की मौसीकी थी, 1973 की फिल्म थी, आसिया जी हीरोइन थी. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच एजाज जी.
1: Anisa Nasir with the big show, weeknights from 7 PM. Like a
2: radio. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: Catch the evergreen classic Kabhi Kabhi on its 50th anniversary.
4: मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए.
3: This Sunday from 2 PM at your nearest Showcase Cinema.
4: हमने तय किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते से नहीं गुजरेंगे.
3: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
5: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
6: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
1: A new Asian sound for the northwest of England. Leica Radio. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk. Anisa Nasir with The Big Show, weeknights from 7 PM.

मर्यादा था फिल्म का नाम 1971 की फिल्म और ये था हमारा उल्टा पुल्टा। दी में जा मैं क्या करूं, जो उससे प्यार है तो है, ये खाक सार इश्क का गुनाहगार है तो है। वाह मुबारक सिद्दीकी साहब और बेहद शुक्रिया जनाब चौधरी फरीद अहमद साहब। अदी में जा मैं क्या करूं, जो उससे प्यार है तो है, ये खाक सार इश्क का गुनाहगार है तो है। मेरे लिए वो एक शख्स सारी कायनात है, सो गुफ्तगु में अब वो बार बार है तो है। मेरे दिल की सल्तनत पे इख्तदार यार का, सो वो खिजां के दौर में कहे बहार है तो है। जो उसको मानता नहीं उसे मैं जानता नहीं, बुरा कहो भला कहो, बुरा कहो भला कहो, मेरा मायार है तो है। कई बरस हुए कि मैंने शायरी है छोड़ दी, मगर ये चाय और गजल कभी कभार है

0: क्या धूम मचाई थी इस गीत ने चने के खेत में। माधुरी जी, सरोज खान जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बो है ना। गीत इतना अच्छा, फिर कोरियोग्राफर इतनी अच्छी, और फिर परफॉर्मर उससे भी कहीं अच्छी, सब एक से बढ़कर एक थे। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा इसको। और अब फैज अहमद फैज जी की कही चंद लाइनें जो हैं हमारे साथ तारिक राहिल जी ने शेयर की हैं, और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं जरूर इसे आप सबको जो है सुनवाऊं। दिल से पैहम ख्याल कहता है, दिल से पैहम ख्याल कहता है, इतनी शीरी है जिंदगी इस पल, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज ना कल, जलवा गाहे विसाल की शम्मे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने।
1: This is Leica Radio.
2: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
1: This is Leica Radio.
2: Greater Manchester.
1: Leica Radio.
0: लीजिए मल्लिका जी की पसंद। मल्लिका जी, आपकी पसंद भी बिल्कुल आप ही के जैसी होती है। What a beautiful choice. Enjoy and get well soon.

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: What a song. Kuch udaasiyan kehte hain khulkar hansne nahi deti. Muskurao to saath aankh bhar aati hai. Malika ji, kya choice hai? Aajkal thodi tabiyat nasaaz hai, lihaza chutti par hai. मेरी रेगुलर लिसनर, रेगुलर कंट्रीब्यूटर बहुत सपोर्ट करती हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड योर साथ एंड योर प्यारे प्यारे छोटे छोटे मैसेजेस. जितनी प्यारी खुद है उतनी प्यारी उनकी चॉइसेस भी होती हैं, इसीलिए तो हर एक की पसंद बन गई. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. ये बहुत ही फेवरेट गीत है, अजिंक्या जी को खासतौर पर बहुत अच्छा लगा. और अजिंक्या जी ने इससे पहले मुझे कहा कि भाई सोने की कीमत और गिराओ. मैंने थोड़ी ना गिराई या बढ़ाई है, ना ही गिराई ना ही चढ़ाई. कहते अभी बच्चों की शादियां करनी है, तो इसका मतलब है गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो.
1: ये है Laika Radio.
2: जाएगा जाएगा जाएगा भाव और नीचे जाएगा. फिलहाल तो अभी अभी लखविंदर वडाली लाइव इन कॉन्सर्ट तशरीफ ला रहे हैं. पंजाबी लेजेंड आप बखूबी वाकिफ है उनके नाम से, उनके काम से. फ्राइडे 16th अक्टूबर एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव एंड संडे 18th अक्टूबर को एट ICC बर्मिंघम.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
0: This is Anissa Nasir with The Big Show.
4: Laika Radio.
5: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
9: Sunshine, skyscrapers and souks.
10: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
9: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
10: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk now.
9: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
10: Southall Travel at all protected.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Laika Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
12: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Laika Radio Network. Now the home of Laika Radio Greater Manchester.

0: फिल्म का नाम मैं खाना, तो गीत में मस्ती कैसे नहीं होती, सोच तो है ही सलीम रजा जी की आवाज में। जान कहकर जो बुलाया तो बुरा मान गए, तुमने मुझको जान कहा, तुमने मुझको जान कहा, जानते हो क्या कहा, यानी के बेवफा कहा। अरे जान का एतबार ही क्या है, तो उसे कितनी सच्ची बात, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो है कि जान सबको प्यारी भी बहुत होती है। लीजिए दोस्तों, अब प्यारा तो ये वक्त भी बहुत है और चाहते हैं कि सिलसिला चलता रहे, लेकिन ये सिलसिला दोबारा चलाने के लिए मेरा आज जाना जरूरी है। आज जाऊंगी तो कल आऊंगी ना इंशाल्लाह। महेंद्र पटेल जी आपकी पसंद, अगला गीत, और उससे अगला गीत मैं ऑनेस्टली नाम भूल गई हूँ, लेकिन बहुत मजे का, एंजॉय कीजिएगा। जरा थोड़ा पैपी सा गीत है। मेरे जाने के बाद गोल्ड नाइट के चुने हुए म्यूजिक का लुत्फ उठाइएगा। ब्रेकफास्ट शो लेकर यहाँ ग्रेटर लंदन में हाजिर रहेंगी काजल, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर सब अपना अपना फर्ज अदा करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। मेरा साथ निभाने के लिए थ्रू आउट बेहद शुक्रिया रुखसाना जी, मिसेज के, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं। दीनी जी थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपको राजा रानी बनाने के चक्कर में रहती हूँ और मेरे आने से पहले उनका मैसेज आ जाता है, अनीसा रानी वाह क्या बात है, मोहब्बत करने वालों हम मोहब्बत इसको कहते हैं। लीजिए आप आखिरी दो गीतों का लुत्फ उठाइए। अनीसा नासिर को आज के लिए इजाजत दीजिए, बशर्ते जिंदगी कल हाजिर होती हूँ। शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: This is Anisa Nasir with the big show. Like a radio.
2: Sunshine, skyscrapers and souks.
3: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
3: Southall Travel. At all protected.
4: London, get ready for an unforgettable night.
5: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com. Catch the evergreen classic Kabhi Kabhi on its 50th anniversary. This Sunday from 2 PM at your nearest Showcase Cinema. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Advertise today on Leica Radio Greater Manchester. Call 0161 250 8222. Next, the biggest romantic songs are up next on Love Sound.
8: Like her. Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.

किसे नहीं मरने दोगी। ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: है लाइका रेडियो।
1: Sunshine, skyscrapers and souks
2: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
1: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
2: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
1: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
2: Southall Travel. At all protected.
3: London, get ready for an unforgettable night.
4: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
3: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
4: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
3: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
4: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
3: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
5: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई द 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
0: ये है लाइका गोल्ड